0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: जिसे अपनी दुनिया समझा वही दुनिया उजाड़ गई, जिसके लिए हर दुआ की वही मुझे छोड़ गई। हमने तो दिल देकर सिर्फ मोहब्बत मांगी थी और वो किसी और के लिए हमें तोड़ गई।